एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सास आरंभ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 और 45 सेकंड्स हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र

नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश

0: क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आनंद से भरी होगी। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

0: केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली

0: पे आपके दिल में?
1: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी शुरू से
0: जी,
1: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती हैं और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूँ और उनको वो चीज़ें मैं दूँ। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी।
0: जी,
1: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है जो शुरुआत में नहीं होती।
0: जी,
1: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही यू नो, या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था यू नो।
0: तो खुद से मुकाबला होता है।
1: हाँ, फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है
0: जी।
1: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश

0: कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है पता
1: जी
0: नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मेरे वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था।
1: जी
0: आज
1: जी
0: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था,
1: जी
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो कुछ लोगों ने कहा इन्हें नहीं, भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था।
1: जी
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है,
1: जी
0: ये नया गाना है, इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं,
1: जी
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये कि एक मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई,
1: ओ
0: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर
1: व्हाट यू
0: एग्जाम्पल,
1: डू नॉर्मली
0: हाँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी बारिश
0: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहाँ पे वो क्लासिकल भी है बीच में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग, वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते हैं,
1: जी
0: और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो यू नो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के
0: हाँ
1: करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक नैन से नैन,
1: जी
0: क्योंकि नैन से नैन
1: ये
0: मेरे
1: तो
0: लिए,
1: बेशक
0: हाँ मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ मैं बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना
1: जी
0: गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया, तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स। तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो
1: जी
0: बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, वो
1: बिल्कुल
0: राग ही
1: बिल्कुल
0: ऐसा है।
1: जी
0: तो आई वॉज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो, तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सर आंखों पर बंदा करता है, यू नो। तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड,
1: राइट
0: एंड इट वॉज गेटिंग रिवाइव्ड फ्रॉम द रियलिटी शोज, क्योंकि
1: हाँ
0: उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था,
1: जी
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो इट लेंट इट सेल्फ टू अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस।
1: वाओ
0: तो वहां से अचानक

0: बिल्कुल
1: सो मच सो कि फिर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात, क्योंकि एक होता ना वो एक एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है, यू नो.
0: क्या बात.
1: तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स,
0: यस,
1: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं,
0: जी
1: यू नो. तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर, जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ.
0: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
1: जी,
0: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा.
1: देखिए, जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है, आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग रिश्ता था. एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था.
0: इसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में. आई वॉज अ किड इन लंडन, और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे. उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में. तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
0: जी,
1: उसकी रिकॉर्डिंग भी है. तो मैं उस कॉन्सर्ट में था. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के, वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे. तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो, हम उनसे मिलना चाहते हैं. और उनको पता था कि बेटा जो है वो बहुत म्यूज़िक में है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने एक उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग अ फ्यू डेज एज अ हॉलीडे. तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ, जा रहा था. तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में बजाता था. तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे. तो आशा जी मिली. तो आशा जी को मैंने अपनी पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूज़िक सुनाया, उन्हें बेहद पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि एक सेकेंड ठहरो,
0: पंचम को
1: ये तो मैं पंचम को मैं बुलाती हूँ, ये तुमको पंचम के को भी सुनाना पड़ेगा. मैंने कहा जी ठीक है. आई यूज टू लव आरडी बर्मन. बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहाँ पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था. लोग अक्सर हीरोज हीरोइंस को देख रहे होते थे, मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है.
0: वाह वाह वाह.
1: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है, मैं देखूंगा फिल्म. और वो यकीनन, चाहे वो मुझे अभी तक याद है, वहाँ पे मैंने अभिमान देखी, मैंने यादव की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन. लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये एस डी और आर डी क्या है.
0: हाँ, बिल्कुल
1: मुझे समझ नहीं आती. तो ना ही मुझे कोई बताए
0: जी
1: बर्मन है ना. देखूंगा. बाद में पता चला कि बाप बेटे. अब समझ भी आता कि भाई उनका जॉनर था जो मिठास थी वो उसमें कॉमन डी एन ए था.
0: यस,
1: यू नो, सो यू कुड टेल. सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई. अच्छा, उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मज़ेदार था.
0: हाँ.
1: उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया. अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा अगर क्या मतलब है
0: जी?
1: अगर से मतलब कि अच्छा मैं लियो लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी
0: गुस्ताखी कर दे,
1: गुस्ताखी कर दे या फिर शक करे उसकी बात के.
0: जी जी.
1: मैं भी फिर जिद में, मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया. देन ही वुड टर्न अराउंड से हाँ हाँ अगर तुमने बजाया तो वो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा जी मैंने ही बजाया.

0: यू नो,
1: मतलब वो इतना नायाब था
0: जी जी जी,
1: अनबिलीवेबल हो गया था
0: हाँ
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है
0: बच्चे
1: वो इतना शानदार बजा सकता है।
0: हाँ करेक्ट,
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं।
0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: वाह।
0: तो मैंने कहा यार बात है, you know, I was like, wow, you know, the Asha Bhosle is saying this to me. और देखो देखो prophecies भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था
1: जी,
0: यू नो आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट, दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद याद है मैंने तुम्हें कहा था, एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है, एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीज़ें तय करता है।
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी जॉली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
0: मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लर्न, मुझे आशा जी यूज टू बी अ वेरी मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था और एंड शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था, अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली
1: जी
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द, मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज की, हाँ सब ठीक ठाक, देन शी वुड स्टॉप क्वाइट, मैं कुछ और मैं बात बोलूं तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया, ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं मतलब कि मैं फिर किधर जाऊं?
1: जी जी,
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैं कहा आशा जी फॉर गॉड सेक यू नो एंड ऑल दैट, नहीं नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो जब जब भी हम जब नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है
1: जी।
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अच्छा, उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन
1: जी।
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में, मैंने वर्षा को फोन किया। अच्छा, वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी, शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल। मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट, मैंने पूरा पूरा बताया। अच्छा, वर्षा यूज टू बी रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो आई इज लाइक दैट ओनली। मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये करके उसने ठक कर दी। मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है। श्योर इनफ जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई,
1: रूप बदल गया,
0: मतलब कि इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट।
1: वाओ,
0: शी सडनली बिकेम अ जायंट।
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस
0: सामने, वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता ना
1: जी।
0: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के उसको 10 और तरीकों से, इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ।

0: मैं कह रहा यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूं।
1: आई
0: वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसमें वो होते ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी
1: वाओ
0: इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस।
1: वाओ क्या बात।
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि बाद में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है।
1: तो आपको याद आए कि चॉइस थी?
0: ऑफकोर्स, मतलब कि यार मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी। हाँ मतलब कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके मतलब यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है। तो यू नो आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना।
1: जी
0: शी वाज अ फिनोमेना एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। यू नो जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, उन्होंने कहा जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती।
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात।
1: जी,
0: और कौन इंसान कह रहा है लता मंगेशकर।
1: Wow,
0: you know, that's wow, a wow, huge wow. thing, and that's probably one of the ultimate compliments she could have gotten from anyone.
1: जी,
0: तो that is why she was आशा भोसले. लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था। अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है। इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ, इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहां का ट्रेडिशन अलग है।
1: जी,
0: यू नो, तो अच्छा अब क्या था कि मैं तो जानता हूं कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है।
1: वाह,
0: यू नो,
1: क्या प्यारी बात।
0: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है। अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर। तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, विच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग।
1: जी
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो। मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं तो सब गोरे हैं, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते, एक मेरे पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूछा है, अच्छा मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था। ऑलराइट सैमी, व्हाट्स योर नेम? आई सेड लिसन शी इज अ लेजेंड। या आई नो, आई मीन यू टोल्ड अस बिफोर शी इज अ लेजेंड, या बट व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा कि यार अगर मैं उनको बोलूंगा आशा भोसले, तो हे आशा, यू नो, मैंने कहा यार ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा हर नेम इज आशा जी।
1: वाओ,
0: तो ही सेड बट व्हाट्स द फर्स्ट फुल नेम? आई सेड हर नेम इज आशा जी भोसले।
1: व्हाट अ ट्रिक।
0: हाँ, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले। आई सेड या ओके फाइन। और वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्होंने, तो जैसे आशा जी एंटर हुई क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। अच्छा आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी और
0: मेरी तरफ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये हमारे परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा बस देख लो आशा जी। आशा जी कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया, मैं पता कि वो कैसे हुआ। बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी,
1: जी
0: सामी इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी,
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं किसी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं। तो

0: नहीं, मैं इस तरह की चीजों पे बुरा नहीं मानता। मैंने तो जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते लेकिन पीछे से छुरा मार देते। तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर। जैसे मैंने कहा ना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया।
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी।
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी।
1: ओ,
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, मतलब सार्कैज़म टू द कोर। एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर एंड से अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है। अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया। हाँ हो गया, अब मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है।
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी।
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बना के तुम्हें देती थी। एंड दैट इज अ फैक्ट। She did.
1: क्या बात है?
0: You know, so you know, she would love to, like I said, she was motherly, you know, and उनके साथ कोई तकलीफ नहीं था
1: जी,
0: उनके साथ वही अपनापन था। और वो भी कई दफा, she used to also be awake till late, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था तो उन्हें सबसे पहले पूछ, खाना खाया तुमने कि नहीं, मैंने कहा नहीं खाया, अच्छा बैठो। जो भी उस वक्त किचन में था अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी। यू नो लाइक आई सेड शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी। कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है।

0: जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूं जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉर लव।
1: जी,
0: जितने मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूं,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट।
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया।
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था।
0: ओके,
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर।
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना, मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है ही। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था।
0: जी,
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है।
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था कि किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसके थोड़ी देर कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू किए क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो।
0: जी,
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाए मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
0: ऑफ कोर्स
1: यू नो एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
0: यस,
1: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया। लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की, मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
0: जी,
1: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही।
0: जी,
1: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
0: तो अफसोस होता है,
1: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोर नचा किसने देखा।
0: जी, लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
1: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ।
0: जी जी,
1: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी
0: लेकिन वापस रिवाइव हुई।
1: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या है?
0: जी,
1: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे विच वॉज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है।
0: जी,
1: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था, और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे,
0: बहुत।
1: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
0: खूब चले,
1: खूब चली। अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल।
0: जी
1: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन immediately it affected the
0: sales of the music.
1: Sales of the music, but by that time वो पार हो चुके थे।
0: जी जी जी।
1: They were already declared a superhit because the people loved the songs. ठीक है ना? तो अब that was one of those very few examples in history, musical history, कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well but the soundtrack did really really well.
0: Yes. लोग आज भी याद करते
1: हैं। हाँ, लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि कभी-कभी ऐसा भी होता है। अब जैसे कि पंचम दा का शोले।
0: जी,
1: he got the maximum amount of awards and sales because of Shole. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
0: Of course, that's the truth.
1: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
0: जी,
1: but because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
0: everything.
1: Everything.
0: Yeah.
1: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंडट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका।
0: जी,
1: and it was, you know, it was people were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. They were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context.
0: Right.
1: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, I loved the songs even before the movie was released.
0: जी,
1: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
0: वो एक separate entity.
1: वो एक separate, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ। मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है।
0: जी,
1: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि they are very easy. You can listen to a song anywhere, ना?
0: Right.
1: You can listen to a song in your headphones, in your, on your phone, in your car, everywhere. You can't watch a film everywhere. Of course, today you have the mobile phones and all
0: still,
1: that. Lekin phir bhi, you don't have the time to watch a film all the time. But music stays with you. Music always stays with you and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative. Lekin it should stand on its own two feet.
0: Right, very
1: good. Ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti. Kabhi bhi banda kehta hai yaar, काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता।
0: पल पल दिल के पास,
1: पल पल दिल के पास। मुसाफिर हूँ यारो
0: जी,
1: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सरली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है। एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन, बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी, सो देन यू नीड द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, under, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha. और उसका मेन कैरेक्टर जूली था. लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है.
0: जी,
1: भूल गया.

0: सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है।
1: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
0: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटिफुल एंड रिलेवेंट।
1: रिलीज इन 1975।
0: वाओ, देयर यू गो। तो देखिए बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे
1: जी
0: कंपाइलेशंस में और इस तरह से। तो वो गाने जो थे बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन। अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जा।
1: जी, ये आज के जमाने,
0: हाँ, आज के जमाने। तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था। तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट, आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन।
1: राइट,
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कॉम्पोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कॉम्पोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग।
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है।
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ, तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर, लेकिन कम अज कम लोगों ने सुना तो सही। लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं, और वो पहले से डूब गया। अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कहा यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ बढ़ा,
0: ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो। अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ।
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, रादर द साउंड ट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां।
1: जी,
0: the film, I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan, aur usme bade interesting kism ke gaane hain jo mere dil ke bahut kareeb hain aaj bhi
1: ji,
0: and mujhe bada usse bade bada dukh hua
1: ki film nahi chali,
0: ki wo film nahi chali, aur lihaza wo gaane jo the wo reh gaye, lekin wo gaane jo hain wo mere dil ke bahut kareeb hain, agar aap unko sunoge to aap you will understand maybe why maybe I am emotionally very attached to those songs.
1: And lucky ke kaun se gaane ki baat
0: sun zara, maine ki sun zara I loved, nahi actually I honestly I loved so many of the songs. I loved shayad ye to pyar hai, kyunki meri pehli martaba lata ji ke sath gaane ka honor hua
1: ji,
0: to jo ek again wo ek khwab tha mera.
1: Kitni dhadkane badi hui thi
0: lata ji ke sath, again ek jo experience tha वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मरतबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का, गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वॉज वेरी नर्वस। और अच्छा, पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस,
1: यस
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मैंने कहा उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इन्होंने भी, उनको पता है, और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी,
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज
0: कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं,
0: उनको पता है, तो उनका

0: सबसे पहले तो ये होता है कि आपको थोड़ा काम डाउन करें। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं पहली दफ़ा रिकॉर्ड करा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा, उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ
1: जी
0: जिस इस तरह की जो चीज़ें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो
1: जी
0: देर वॉज नो सच थिंग। तो मैं अपना ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्हें ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कोई अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले। हाँ नहीं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूं।
1: अरे गजब।
0: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त।
1: ओ
0: शी वॉन्टेड मी टू हैव दैट मेमोरी,
1: वाओ,
0: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को, उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूं। मैंने कहा यार कौन करता है ये,
1: कौन करता है,
0: कौन करता है? आप मतलब कि यू आर गिविंग मी दैट ऑनर दैट यू स्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड गिविंग मी दैट ऑनर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, दैट यू गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट, एंड आई एम जस्ट आई एम अ किड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी।

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे, अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरेक्ट मैंने करना शुरू किया, और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक, कि व्हाट वाज द प्रोसेस, कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है, और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी, हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे, तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखे, क्योंकि वी डिडंट नो विच वन टू कीप, यू नो, बिकॉज दे वर ऑल सो गुड एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे। ही वुड गिव अस एवरी शॉट, ही वुड गिव इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला वॉज समथिंग दैट वॉज एब्सोल्युटली प्राइसलेस। And I learned so much from all of these people. And it was such an incredible pleasure.

0: चलते चलते विविध भारती के सुनने वालों के लिए आप क्या गुनगुनाएंगे जो दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं और म्यूजिक के ट्रूली दीवाने लोग हैं?
1: इश्क तुम्हारा

0: वाह वाह वाह वाह, सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश बाकी रहे।
1: बेशक।
0: तो हमारे साथ ये वादा कीजिए कि अपनी पसंद के 10 गानों पर इसी तरह फ्री व्हीलिंग बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइव आएंगे।
1: जरूर आऊंगा, जरूर, विद प्लेजर, विद प्लेजर।
0: शोर मचा के आपको बुलाएंगे।
1: तफसील में,
0: तफसील में, तफसील में, बिल्कुल। तब दूसरों की भी बातें होंगी, आपके उस्तादों की,
1: जरूर जरूर, है ना,
0: और इंस्पिरेशन की, आपके फेवरेट गानों की,
1: ऑफकोर्स।
0: तो उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों, आज के रंग तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग योगिता जाधव, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील

0: की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा विजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारूफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से
2: सदा।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल

खिले। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बुझ मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी, और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है। उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए, और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं। अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाज़ा लगाया है। लेकिन बहुत लोगों को अंदाज़ा लगाना बाकी है, तो आप ज़रा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है। वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं, प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम। फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि। आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल। इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत घर फूल वक्त ख्वाब नाम प्रेम प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहां कीजिए जहां हमने कहानी पूरी करने की बात कही है। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वतों के बीच में।

पेड़ों के झुरमुटों के बीच जब वो वापस लौटती है, एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको, एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो

की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं। कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत चंबा ख्वाब पगडंडी, खूबसूरत गाना, और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए, फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, धर्मेंद्र और सायरा बानो। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी, उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले। एक श्रोता ने ये लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियाँ, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरी करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज़ किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार की निशानी उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियां लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं। कहानी सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियां, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है, तो वो भी बताइए। श्रोताओं ने वो भी बताया है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में ज़रूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के।

फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की, और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं, वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था।

एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे मन की सारे प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं, वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे, बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और अब बहुत सारे

जाती हैं, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है। उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफ़र पूरा हुआ, सुरीला सफ़र आज बस इतना ही। सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक समेत आम लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दोपहर 2 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दे सकता है ताकि आज दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू हो सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चर्चा शुरू होने पर वे सदन में मौजूद रहेंगे और सभी सदस्यों की बातें सुनेंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद वे कल दोपहर 3 बजे चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गृह विभाग ने विशेष अफसरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हैं। नई व्यवस्था के तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के साथ ही जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, CTSP और ग्रामीण SP भी इन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अपने स्तर पर ही निवारक कार्रवाई करते हुए बॉन्ड या मुचलका भरवा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के अलग अलग विभागों ने भारत की ग्रांट सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लगभग 803 मिलियन नेपाली रुपए की कुल लागत वाले 8 विकास परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सहरसा मानसी रेलखंड पर सिमरी बख्तियारपुर के पास आज सुबह पूर्णियाकोट से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस के एक AC कोच में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हमारी संवाददाता ने बताया कि सोनवर्षा कचहरी और सिमरी बख्तियारपुर के

बीच ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के पहिये के पास से धुआं और आग की लपटें दिखाई दी। इसकी सूचना मिलते ही ट्रेन को सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर रोका गया। रेलवे कर्मियों और दमकल की टीम ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मॉनसून के कमजोर पड़ने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया के टिकारी में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है, वहीं कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे से जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी महकमों और समाजी तंजीमों की सरगर्म हिस्सेदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और इज्तमाई वंदे मातरम गीत जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज सभी जिला सदर दफातर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी तादाद में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, अवामी नुमाइंदे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस रजाकार समेत आम लोग शामिल हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत तुलबा के मामले समेत किसी भी मौजू पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है और ऐवान में अराकीन की जानिब से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। पार्लियामेंट अहाते में सहाफियों से बातचीत में जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस मामले पर बातचीत के लिए दोपहर 2 बजे तक लोकसभा स्पीकर को नोटिस दे सकता है ताकि आज दोपहर 3 बजे बहस शुरू हो सके। मरकजी वजीर ने कहा कि बहस शुरू होने पर वह ऐवान में मौजूद रहेंगे और सभी अराकीन की बातें सुनेंगे। उन्होंने कहा कि बहस मुकम्मल होने के बाद वो कल दोपहर 3 बजे बहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रियासती हुकूमत ने रियासत में कानून व इंतजामिया को मजबूत करने के लिए इंतजामी बंदोबस्त में तब्दीली की है। महकमा दाखिला ने खसूसी मौाक़े पर नज्म व नस्त को बनाए रखने के मकसद से पुलिस के सीनियर हुक्काम को स्पेशल एग्जीक्यूटिव जुडिशल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी है। नए सिस्टम के तहत पुलिस जोन और रेंज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के साथ ही जिलों के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट, CTSP और रूरल SP भी इन ताकतों का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी शख्स से अमन अमान में खलालंदाजी के अंदेशे की सूरत में स्पेशल एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी सतह पर ही सद्देबाप की कार्रवाई करते हुए बॉन्ड या मुचलका भरवा सकेंगे। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना की मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम तजावीज पर मुहर लगने का इम्कान है। नेपाल में हिंदुस्तानी सफारतखाना और हुकूमत नेपाल के अलग अलग महकमों ने भारत की ग्रांट इमदाद से तालीम, सेहत और ज़रई शोबे में प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। तकरीबन 803 मिलियन नेपाली रुपए की कुल लागत वाले 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नेपाल हुकूमत के तहत मकामी सरकारी इदारों के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। सहरसा मानसी रेल सेक्शन पर सिमरी बख्तियारपुर के करीब आज सुबह पूर्णियाकोट से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस के एक AC कोच में आग लगने से मुसाफिरों में अफरा तफरी पैदा हो गई। हमारी नामानिगार ने बताया कि सोन वर्षा कचहरी और सिमरी बख्तियारपुर के दरमियान ट्रेन के 3rd AC इकोनॉमी कोच के पहिए के पास से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। इसकी खबर मिलते ही ट्रेन को सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर रोका गया। रेलवे मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी मुसाफिर के जानी नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे अफसरान ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। रियासत में जमीन, प्लॉट और फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का अमल अब पूरी तरह पेपरलेस होगा। 17 अगस्त से सभी रजिस्ट्रेशन दफातर में यह नया सिस्टम नाफिज होने जा रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प ड्यूटी अदायगी, बायोमेट्रिक तस्दीक और दस्तखत तक का पूरा अमल ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल

ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के पहिए के पास से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। इसकी खबर मिलते ही ट्रेन को सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर रोका गया। रेलवे मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी मुसाफिर के जानी नुकसान की खबर नहीं है। रेलवे अफसरान ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। रियासत में जमीन, प्लॉट और फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का अमल अब पूरी तरह पेपरलेस होगा। 17 अगस्त से सभी रजिस्ट्रेशन दफातर में यह नया सिस्टम नाफिज होने जा रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के तहत डीड तैयार करने से लेकर स्टाम्प ड्यूटी अदायगी, बायोमेट्रिक तस्दीक और दस्तखत तक का पूरा अमल ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिजिटल डीड की कॉपी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए दस्तियाब कराई जाएगी। गौरतलब है कि रियासत के 50 रजिस्ट्रेशन दफातर में यह सिस्टम पहले ही शुरू हो चुका है। मानसून के कमजोर पड़ने से रियासत में बारिश की सूरत हाल में कमी आई है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया के टिकारी में सबसे ज्यादा 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज रियासत के जनूबी खित्तों में कुछ मकामात पर आंधी के साथ बर्फबारी का इम्कान है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएशन CSA के पद पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सिलेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.indianraillways.gov.in। पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर LBO के 545 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2026।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता नोट करें www.pnb.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी एट 90
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
2: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य

0: सभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाए हैं। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी

0: शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन व्हिच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों

0: समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष। जय

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: लेगी,
1: हाँ,
0: है ना, इसे संगठित करके रखना हाँ, होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूर बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
1: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। उड़ीसा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो उड़ीसा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंद गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं, सिल्क पहनना चाहती हैं तो वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज अगर आप बोलें कि किस प्राइस
1: साड़ी चल रही है। कल ही एक साड़ी खरीदी जो पहनने पर सुंदर दिख रही थी। खंडुआ साड़ी का नाम पहली बार सुन रही हूँ, आपसे जानकारी मिलेगी। जानकारी भी मिल चुकी
0: बिल्कुल। और हमने जो पूछा था ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा ईजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है और

0: सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है। तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में बाजारों में दिख रही है। साड़ियां चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है, मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है। जी
0: वही हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदनी तो जाने जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं,
0: हाँ बिल्कुल।
1: कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: कितना
0: सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की

0: होती होगी, हम जो हमारे प्रिय हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में हम वो
1: हमारे
0: हमें
1: साथ
0: साथ
1: रहती है।
0: रहती है और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद कहते
1: कहते हैं।
0: हैं।
1: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
0: जी
1: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
0: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है।
1: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ
0: हाँ,
1: सेल लगा है।
0: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले
1: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है, और
0: बिल्कुल।
1: बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता, यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर जब निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुक कर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियाँ भी हम प्राप्त कर पाते हैं। जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
1: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है, और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं, तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
0: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूं और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूं। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
1: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए, जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है, बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
1: एक हमारे सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है, स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञान वर्धन के

0: मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है, तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
1: बिल्कुल। और ये संपादीय जो संपादीय लेख जो होती है, संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पर लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है?
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है, और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन
1: मोबाइल से दूरी
0: स्क्रोलिंग
1: करना है।
0: से उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो

0: लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है। उस अखबार, मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
0: और साथी कहते हैं
1: जी
0: ये पढ़ना चाह रहे,
1: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
0: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
1: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता जगमगा को तकदीर का जगमाता जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
0: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए, कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और धन्यवाद कहते हैं।
1: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
0: कितने सुंदर मैसेज लिखते हैं।
1: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाड़ को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का

0: गीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में उस इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, आप चाहे तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना।
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है, खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने। कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
0: और अब क्या करना है?
1: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मेपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं दीपा।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे जी। उनका मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता।

0: तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया, ऐसे आई
0: रेडियो से रेडियो,
1: रेडियो से रेडियो।
0: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया।

0: कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा। जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म शंकर जय किशन,
1: हाँ बिल्कुल
0: शैलेंद्र,
1: हाँ। सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था। वो मैं रेडियो में कर रहा था, मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया। यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम में। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा, क्योंकि शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहां से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से। 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था
1: हाँ,
0: वेंकटेश में, वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश

0: रिकॉर्ड अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था तो। और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो वो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया। उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम
1: हैं
0: लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी। हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में। और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस, मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: जी, बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी। एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको

0: मिल रही थी, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो, वो तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ, तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
1: ऐसी बोल दिया।
0: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिवा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
1: ओके
0: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया, ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
1: Right.
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने, मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना, हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते हैं।

0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिडेक्स सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड
1: कोर्स।
0: हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड
1: आएगा।
0: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने,
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, VFX भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत यू नो रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना,
1: बिल्कुल
0: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कानूनी
1: दांव से छूट जाते हैं,
0: लूज एंड्स ऐसे ऐसे छूटते हैं जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
1: बिल्कुल।
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया। तो दो शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस की बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने। और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे। तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
0: बिल्कुल,
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।
0: वाह वाह।
1: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई, उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
0: वाह वाह वाह वाह। वरना
1: सब रोमन में पढ़ते हैं
0: जी।
1: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं, या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
0: ऑफ कोर्स।
1: तो वो किया हमने। अस्त्रा फोर्स नाम था उस शो का। साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब

0: पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह
0: फोन पे मुझे अमर चित्र कथा के कुछ पैनल्स दिखाए, जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्र कथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में कहीं
1: जाती है।
0: कहीं काम आती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल
0: शोले कर ली थी, तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं
1: मतलब नहीं
0: मिलता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच में मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो रहा
0: बहुत सारी
1: है।
0: चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूं, अनलिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूं। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए।
0: आनंद जी, इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है, एक साइकिल है, चक्र है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे हैं, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: बनते
0: चाचा
1: बनते
0: चौधरी
1: रह
0: पे
1: जाती
0: शोभा।
1: है,
0: हाँ,
1: मतलब कई बार
0: डोगा
1: अनाउंस
0: डोगा
1: होता है।
0: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
1: हाँ
0: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है, लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी, मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है, मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है, बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है,
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: और पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल

0: मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवावाणी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने इस वर्ष मई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। श्री बिरला ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
4: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा, उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट, लोगों और

साथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़ और खाइयां तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रहल बा। विद्यालय, सरकारी विभाग और इस सामाजिक संगठन के बढ़ चढ़ के भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और इस सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसन कार्यक्रम हो रहल बा। आज उस सभी जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाल गई है। इमें भारी संख्या में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चा, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक और आम लोग शामिल भइल ह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले बाड़े कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट अब ऑनलाइन बुकिंग हो रहल बा। साल 2013-14 में यह आंकड़ा लगभग 49% रहे। श्री वैष्णव आज लोकसभा में एक गोसवाल के लिखे जवाब में जानकारी दे रहे हैं। वो बतावले हैं कि आरक्षित और अनारक्षित टिकटन के डिजिटल बुकिंग के बढ़ावा देवे खातिर रेलवे रेल वन ऐप लॉन्च कैले बा। केंद्र सरकार 10 और 20 रुपया के प्लास्टिक बैंक नोटन के फील्ड ट्रायल के मंजूरी दे दिले बिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में एगो सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दे ली है। श्रीमती सीतारमण कहली है कि फिलहाल प्लास्टिक नोट के पूरा तरह से लागू करे के कोनो तय समय सीमा नहीं है। वो बतौली है कि प्लास्टिक नोट कागज के रुपया के साथ ही जारी कैल जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल के बैठक भइल ह। राज्य सरकार 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2030-31 तक आगे बढ़ा देले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में भइल राज्य मंत्रिपरिषद के बैठक में ए प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गइल ह। ए योजना खातिर 430 करोड़ रुपया के राशि मंजूर कर गेल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़े कि 15 अगस्त से सरकारी विद्यालय में पढ़े लिखे वाला लड़कन के ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू हुई। ये माध्यम से विद्यार्थी लोग स्कूल के बाद रात के 11 बजे तक विशेषज्ञ मास्टर लोग से पढ़ाई कर सकें। पटना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधित कर कहले हैं कि हर साल राज्य के लगभग 100 गो प्रतिभाशाली लड़कन के उच्च शिक्षा खातिर विदेश भेजे के तैयारी कल जा रहल बा। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव कहले बाड़े कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलला के बाद सकरी और रैयाम चीनी मिल जल्दी चालू हुई। श्री यादव आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग के उपलब्धि के जानकारी देते रहले हैं। संवाददाता सम्मेलन में विभागीय सचिव धर्मेंद्र सिंह बतौले हैं कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के रवि फसल के मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कैल जाए। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय और द गो ट्रस्ट के बीच बकरी पालन के बढ़ावा देवे खातिर आज पटना में समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कैल गेल है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के तहत आवे वाला पशुपालन निदेशालय बिहार और द गोट ट्रस्ट के बीच ई गैर वित्तीय समझौता भइल ह। इस समझौता के मुख्य मकसद बकरी पालन वाले लोगन के वैज्ञानिक तरीका से बकरी पालन, पशु स्वास्थ्य और देखरेख, ट्रेनिंग क्षमता बढ़ावे और संगठित बाजार व्यवस्था से जुड़ल बा। जदयू सांसद लोग आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात कैले हैं। ये मौका पर बिहार के विकास से जुड़ल महत्वपूर्ण मुद्दा और इस संसदीय क्षेत्र में चल रहल विकास के कामकाज पर लम्हर चर्चा भइल है। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार से अलग विभाग भारत के अनुदान से शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती किसानी के क्षेत्र में प्रोजेक्ट के पूरा करे खातिर समझौता पर दस्तखत कैले बाड़े। करीब 803 मिलियन नेपाली रुपया के कुल लागत वाला 8 गो परियोजना के नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्था के सहयोग से पूरा कैल जाए। मॉनसून के कमजोर पड़ला से राज्य में बरखा की गतिविधि घट रहल बा। मौसम अपना पूर्वानुमान में कहल गेल बा कि आज राज्य के दक्षिण हिस्सा में कुछ जगहन पर आंधी के साथ ठनका गिरे के संभावना बा। वही जा कुछ भागन में हल्का बरखा भी हो सकता। एक साथी आकाशवाणी के पटना में प्रसारित भोजपुरी समाचार की अंक यही जा समाप्त भई।
1: अभी आप भोजपुरी बुलेटिन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के भावना से जुड़ल तरह तरह के कार्यक्रम हो

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन।
1: नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते कार्यक्रम घर आंगन में। उम्मीद है हमारी सखियाँ स्वस्थ और मस्त होंगी। सखियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। पूरे देश में इस समय देशभक्ति की एक अद्भुत लहर है, इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, आज का हमारा यह कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाला है। आज की हमारी मुख्य चर्चा में हम बातें करेंगे महिला समृद्धि योजना पर, जो हम सखियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। और वहीं हमारे खास सेगमेंट कला और संस्कृति में आज हम गहराई से जानेंगे नारियल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। आखिर क्यों हर शुभ काम में काम की शुरुआत इसी श्रीफल से होती है, इस पर आज विस्तार से बातें करेंगे। तो चलिए सखियों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। सखियों, देशभक्ति के इस पावन पर्व का जोश और उल्लास हमारे दिलों में पहले से ही हिलोरे मारने लगता है। सहेलियों के साथ मिलकर आज़ादी के इस जश्न की तैयारी करने का मज़ा ही कुछ और है। सखियों, हमारी दोस्ती हमेशा आज़ाद, खुशहाल और अटूट रहे। आओ मिलकर इस देश की खुशहाली की दुआ करें। देश के प्रति हमारा प्यार और आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। देशभक्ति के इस पावन पर्व का जोश और उल्लास हमारे दिलों में ही सहेज रहे और हम सब मिलकर आज़ादी के इस जश्न की तैयारी करने का मज़ा लें। तिरंगे की शान सजाने और जश्न मनाने की आप सभी की तैयारियों के बीच इस बार 15 अगस्त पर देश के प्रति अपनी एकजुटता और प्यार को मजबूती से दिखाएगा। हर घर तिरंगा फहराने और उत्सव मनाने की तैयारियों के साथ सभी सखियां अपने सफ़ेद, हरे और नारंगी रंग के एथनिक कपड़ों या दुपट्टों का कॉम्बिनेशन प्लान करती हैं। हर गली, मोहल्ले, स्कूल और बिखरने लगी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश तिरंगे देश की तरक्की और खुशहाली के इस उत्सव में हमारी दोस्ती और आपसी प्यार यूं ही बना रहे। और इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं आज का पहला गीत।

अभी हम जो गीत सुन रहे थे, आवाज़ें थीं उदित नारायण, लता मंगेशकर और गुरुदास जी की। और अब आइए बात करते हैं सखियों महिला समृद्धि योजना पर। महिला समृद्धि योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके दो मुख्य रूप हैं, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण देना, और दिल्ली सरकार द्वारा की गई नई योजना जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं हाल में ही दिल्ली सरकार ने अपनी इस योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। सखियों, प्रति लाभार्थी 1,25,000 तक और स्व सहायता समूह के लिए 15 लाख तक प्रावधान है। इसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और लघु उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना। बाजार के मुकाबले इस लोन पर सिर्फ 4% वार्षिक की बहुत कम दर से ब्याज लिया जाता है। इस लोन को वापस करने के लिए 42 महीनों का अच्छा खासा समय मिलता है, ताकि आप पर बोझ ना पड़े। सखियों, इस पैसे से आप सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग, हस्तशिल्प या कोई भी लोकल दुकान आसानी से शुरू कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की कुल सालाना कमाई 3 लाख से कम होनी चाहिए। यह योजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के तहत OBC, SC, ST और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए चलाई जाती है। इसको आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ज़रूरी है। यह लोन सीधे बैंक द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार की स्टेट

चैनलाइजिंग एजेंसीज या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। आप अपने ज़िले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या विकास भवन के कार्यालय में जाकर इसका ऑफलाइन फॉर्म ले सकती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने समूह के माध्यम से भी इसके लिए सामूहिक आवेदन कर सकती हैं। और अब आइए सखियों, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में जो हमने अभी गीत सुना, ये गीत फिल्म हम हो गए हैं आपसे लिया गया था। सखियों, आज कला और संस्कृति में हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र वस्तु की जिसके बिना हमारा कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ या त्यौहार अधूरा माना जाता है। नारियल, जिसे शास्त्रों में श्रीफल भी कहा गया है। सखियों, नारियल का हमारे जीवन में बहुत गहरा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। कहते हैं नारियल में त्रिदेव का वास होता है। नारियल की ऊपरी सतह पर बने तीन बिंदुओं को भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसके पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। सखियों, नारियल लक्ष्मी जी का भी प्रतीक है। श्री का अर्थ ही होता है माता लक्ष्मी, इसलिए नारियल को श्रीफल यानी कि लक्ष्मी जी का फल कहा जाता है। इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। प्राचीन काल में पूजा के दौरान दी जाने वाली पशु बलि की कुप्रथा को रोकने के लिए नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हुई। नारियल फोड़ना मनुष्य के अहंकार को तोड़ने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भी प्रतीक है। नवरात्र, गृह प्रवेश या किसी बड़े हवन पूजन में तांबे या मिट्टी के कलश के ऊपर नारियल रखना अनिवार्य यानी कि शुभ होता है। इसके बिना पूजा का संकल्प पूरा नहीं माना जाता। कहते हैं शुभ शुरुआत ही नारियल से ही होती है। जैसे नई गाड़ी खरीदना हो, नए घर की नींव रखनी हो या किसी व्यापार की शुरुआत करनी हो, नारियल फोड़कर ही काम की शुरुआत की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हों। कई संस्कृतियों में विवाह, तिलक या मेहमानों के स्वागत के समय पान के पत्ते के साथ नारियल भेंट करना अत्यंत सम्मानजनक माना जाता है। पश्चिमी तटीय भारत जैसे महाराष्ट्र और गोवा में श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मछुआरे समुद्र देवता को शांत और प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करते हैं। सखियों, नारियल का बाहरी आवरण बहुत कठोर होता है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में मजबूत रखने की सीख देता है। इसके अंदर का सफ़ेद हिस्सा बहुत कोमल और पानी पवित्र होता है जो हमें सिखाता है कि हमें बाहर से भले ही मजबूत बनना पड़े लेकिन अंदर से हमेशा सरल, दयालु और पवित्र बने रहना चाहिए। इसी के साथ सखियों, आइए चलते चलते सुनते हैं एक और गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी हमने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की

आवाज़ों में गीत सुना। ये गीत आपका शरूर फिल्म से लिया गया था। और सखियों, घड़ी की टिक टिक कर इशारा कर रही है कि अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे महिला भवनों का कार्यक्रम घर आंगन, और अब लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम भोजपुरी लोकगीत।

भरत सिंह भारती के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा। देखी श्रोता सभी, आजकल के भाग दौड़ के जीवन में हमनी के कुछ जिम्मेदारी बा, इस जिम्मेदारी के बखूबी निभावे के चाहिए। आज हमनी के हर क्षेत्र में जुआ लोगन के काफ़ी जिम्मेदारी बा, आ खासकर तो समझी कि कहल जाला कि आज के बच्चा कल देश के भविष्य बनेलन, तो बच्चन पर विशेष जिम्मेवारी होला। आ बच्चन के पढ़ाई से लेके बच्चन के एक तरह से संस्कार आ संस्कृति दोनों से लगाव रखे के उपाय करे के चाहिए। कोना तरह से ओकर संस्कृति से लगाव रही, हमनी के संस्कृति ही संस्कृत बा आ संस्कृत ही संस्कृति बा। देखी आज के समय में भी बहुत ऐसा परिवार बा, बहुत ऐसा लोग बा जे संस्कृति के बरकरार रखले बा, चाहे वो कोनो व्यवहार होके, बोलचाल के होके, पहनाव से होके या भोजन से होके। देखिए आज के युग में बहुत से लड़का जंग फूट के एक तरह से कहीं कि बहुत आदि हो गई, तो एकरा से थोड़ा हमनी के बचे के चाहिए। ओकर नामे बा जंक फूड, यानी कि हमनी के शरीर में कैलोरी बढ़ा दी, विटामिन कम मिली, शरीर के रोगी ज़्यादा बनाई। कोल्ड ड्रिंक बा, पिज्जा बा, बर्गर बा, एकरा से कोनो पौष्टिक तत्व बहुत बड़ पैमाना पर नहीं मिले जाए वाला। अब पहले के ये रहे हमनी के अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, यानी ऐसा फाकत नहीं जा। चना हर काम में कहल जाला कि चना जनबा गरीब के किशमिश है, तो सही में श्रोता सब हमनी के ऐसा भोजन के तत्व लेवे के चाहिए जरा से हमनी के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बरकरार रहे। तो आई आज के हमनी के अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस के बारे में जानल जाओ, कहे से कि आज 12 अगस्त है, पूरा दुनिया में मनावल जा रहा बा। एकर मुख्य उद्देश्य जुआ से जुड़ल मुद्दा पर ध्यान आकर्षित कइल बा और समाज के विकास में उनकर भागीदारी के बढ़ावा दिहल बा। पहला बार ई दिवस सन 2000 में मनावल गई संयुक्त राष्ट्र महासभा दिसंबर 1999 में अपन संकल्प के जरिए 12 अगस्त के ई दिन मनावे के फैसला कैले रहन। एकर पृष्ठभूमि 1998 में ही लिखल गई पुर्तगाल में भइल विश्व जुआ मंत्री सम्मेलन के सिफारिश से जुड़ल रहे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर दिन एह दिन के विशेष जानकारी उपलब्ध कराओल जाला। एकर महत्व आ उद्देश्य एह तरह के बा कि जुआ लोगन के शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर दिलावल जाला। दुनिया भर में जुआ लोगन के आवाज के मंच दिलावे के भी उद्देश्य रखल गई बा। सामाजिक बदलाव और प्रगति में जुआ लोगन के योगदान के सम्मान भी कइल एकर मुख्य उद्देश्य बा। एक हमनी के देश में राष्ट्रीय जुआ दिवस हर साल 12 जनवरी के स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में मनावल जाला, जबकि 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस के रूप में मनावल जाला। देखिए श्रोता सब, कितना मने खुशी के बात बा कि आज 12 अगस्त बा, आज के दिन हमनी के अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस मनावल जा रहा बा। तो एकरा में देखी जुआ लोगन के हमनी के मने राष्ट्र के निर्माण में या कहीं कि राष्ट्र के उत्थान में बहुत काफ़ी महत्व बा। हमनी के जुआ लोगन के भागीदारी बड़ा महत्वपूर्ण बा। जुआ अपन ऊर्जा, नया सोच, तकनीकी ज्ञान और मेहनत से देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के आगे बढ़ावल। जुआ लोगन के मुख्य भूमिका नवाचार और तकनीक बाटे, नई तकनीक और बिजनेस आइडिया से देश के आर्थिक विकास करेलन। शिक्षा और कौशल, देखिए पढ़ल लिखल देश के पढ़ल लिखल लोग जो बढ़न, यह देश के जिम्मेदार नागरिक होलन। आ इनकरे के मने जिम्मेदारी भी दिहल जाला और अपन क्षमता के उपयोग करेलन, इससे जुआ लोगन के भागीदारी राष्ट्र निर्माण में काफ़ी रहला। सामाजिक बदलाव भी कर सकलन, समाज में फैलल कुर्तियन के दूर करेलन।

लोग और एकता बनौले रखेलन। नेतृत्व क्षमता, देखी राजनीति प्रशासन और सामाजिक कार्य में आगे आके नेतृत्व संभालन जुआ लोग, तो जुआ लोग के भूमिका हमनी के राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र के निर्माण में कहीं की काफ़ी महत्वपूर्ण बा। ऐसे जुआ लोगों के भागीदारी रहे के चाहिए और जुआ लोग जौन बनल वो आगे आके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करस। तो इस तरह से जुआ लोगन पर विशेष जिम्मेदारी बा। आई आज के एगो लोकगीत सुनल जा, आज के कलाकार बनी हमनी के अवधेश कुमार, यहाँ से सुनल जा झूला लागल कदम के डाढ़ी झूले कृष्ण मुरारी, ताई सुनल जाओ।

0: देखिए कितना निमन गीत रहल अवधेश कुमार जी के कि झूला लागल कदम के डाढ़ी झूले कृष्ण मुरारी, मन सुन के एकदम गदगद हुई आ श्रोता सब रोरो सब के मन ऐसे ही गदगद हुई जरूर भइल हुई। आई अब हमने के थोड़ा सा संदेश सुनल जाओ फिर आगे हमने के चर्चा कर लिए।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान,
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: देखी एक पहले सुनत हमने के लोकगीत आ कलाकार हैं अवधेश कुमार जी, तो अवधेश कुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया जा। श्रोता सब हमने के जिला जौन बा धान के कटोरा कहलाला रोहतास जिला, आ धान के कटोरा के साथ साथ यहाँ पर्यटन के भी संभावना बहुत बा। यहाँ पर दर्शनीय स्थान बहुत तरह के बा, यदि हमने के एकरा के खोजल जाओ तो इसमें बहुत से संभावना बा। आ एकरे विषय पर हमने के रोहतास में पर्यटन के संभावना कितना बा का बा कैसे बा एगो वार्ता सुनल जाओ। आज के वार्ताकार बनी हमने के डॉक्टर विजय कुमार सिंह, तो यहाँ से सुनल जाओ कि रोहतास में पर्यटन के संभावनाएं का बा।
3: पर्यटन की दृष्टि से बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, दुर्ग, किले और प्राचीन काल के भग्नावशेष एवं शैलाश्रय भरे पड़े हैं, जो विश्व के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। इस प्रकार रोहतास में भी पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से रोहतास की सीमा पूर्व एवं दक्षिण में सोन नदी से तथा पश्चिम एवं उत्तर में कर्मनाशा नदी से घिरी है। रोहतास जिले का पूरा क्षेत्रफल 7213 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 10.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है। रोहतास के पूरे क्षेत्रफल का 1747 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। पूरा रोहतास क्षेत्र दक्षिण में पठारी भाग एवं उत्तर में मैदानी भाग में बटा हुआ है, जिनमें पर्यटन स्थलों की भरमार है। ये पर्यटन स्थल उद्योग के रूप में अभी तक विकसित नहीं किए जा सके हैं। पर्यटन की दृष्टि से रोहतास के पर्यटक स्थलों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रोहतासगढ़, शेरगढ़ एवं सासाराम किला, रोहतासन मंदिर, गणेश मंदिर, काली मंदिर, भलनी धाम, ताराचंडी धाम, देव मारकंडे, तुतला भवानी, गुप्तेश्वर महादेव आदि जिला के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। देव मारकंडे, यह स्थान नासरीगंज से 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ के शिव मंदिर में अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। यहाँ सूर्यदेव, उमा महेश्वर, गणेश एवं दुर्गा और चामुंडा की प्रतिमाएं हैं। भौलनी धाम, यहाँ यक्षिणी भवानी का मंदिर है जो नटवार से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ताराचंडी धाम, यह सासाराम से दक्षिण एक्सप्रेस हाईवे से सटे पहाड़ी की गुफा में तारा की प्रतिमा है, जहां हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं।

यहीं बगल में प्रताप धवल देव का 1173 ईस्वी का शिलालेख है। गुप्तेश्वर महादेव। गुप्ता धाम से प्रसिद्ध यह स्थान जिले के चेनारी प्रखंड से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। साल में बसंत पंचमी, शिवरात्रि एवं श्रावण माह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव को जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बहुत ही सक्रिय गुफा से होकर श्रद्धालुओं को जाना पड़ता है। यहाँ से थोड़ा आगे सीताकुंड है, जिसका जल हमेशा ठंडा रहता है। यह स्थान ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, जो आस्था का केंद्र होने के साथ पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुतला भवानी। यह स्थान तिलौथों के नज़दीक तुतराही प्रपात के समीप एक पट्टी पर स्थापित है। अष्टभुजी देवी की स्थापना 1158 ईस्वी में तत्कालीन राजा प्रताप धवल देव द्वारा जगधात्री दुर्गा के रूप में की गई है। यहाँ का जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। बांदू का 10 सीसानाथ महादेव। यह स्थान सासाराम से करीब 65 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में सोन नदी के बीच में बांदू ग्राम के नज़दीक है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण शिव भक्ति में कैलाश पर्वत से इसी शिवलिंग को लेकर यहाँ से गुजर रहा था, तभी लघुशंका की अनुभूति हुई। शिवलिंग एक ब्राह्मण को देकर लघुशंका करने लगा। देर होने के कारण ब्राह्मण शिवलिंग को वहीं रखकर चला गया। वरदान के अनुसार रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका और उसे इसी स्थान पर प्रतिष्ठित करना पड़ा। यहीं पर तीन नदियां, सोन नदी, कोयल नदी और सरस्वती नदी का संगम स्थल भी है। यही सरस्वती नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, जो उल्ली के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर विश्वामित्र मंदिर है, जो महर्षि विश्वामित्र की प्रयोगशाला थी, जहाँ पर उन्होंने राम लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा दी थी। रोहतासगढ़ के मंदिर। रोहतास किला से 3 किलोमीटर पूर्व रोहतासन मंदिर एक ऊंचे आधार पर अवस्थित है। इसके बगल में हरिश्चंद्र मंदिर अवस्थित है। यहाँ एक विष्णु की खंडित प्रतिमा पड़ी हुई है। इस समय एक काले पत्थर की प्रतिमा है। स्थानीय वनवासी इसे पार्वती मंदिर कहते हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में गणेश मंदिर है, जो राजघाट के रास्ते में एक ऊंचे आधार पर अवस्थित है। गणेश मंदिर से पूर्व उत्तर में महादेव मंदिर है, जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है। ये सभी दर्शनीय देव मंदिर पर्यटकों को आकृष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ यहाँ शेरशाही मस्जिद, जो नागाटोली गांव के समीप है, हफ्स खां की मस्जिद, मदरसा, हफ्स खां का मकबरा, साकी सुल्तान का मकबरा आदि वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो पर्यटकों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। भारत के प्राचीन विशालतम अभेद्य पहाड़ी दुर्गों में एक रोहतासगढ़ किला है, जिसे हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने अपनी प्रेयसी के याद में बनवाया था। यह किला डेहरी ऑन सोन से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में समुद्र तल से 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर अवस्थित है। वहीं सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकता है। किले पर पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं, जो भेड़ा घाट, कठौतिया घाट, घोड़ा घाट एवं राजघाट के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रताप धवल देव द्वारा बनवाया गया रास्ता है, जो फुलवारी घाट कहा जाता है। जिस पहाड़ी पर किला अवस्थित है, वह 28 मील की परिधि में फैला हुआ है, जिसमें उत्तर और पूर्व की पहाड़ी खड़ी है। पश्चिम से रेहल की पहाड़ी से जुड़ी हुई है, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कठौतिया घाट दरवाजा का निर्माण कराया गया है। संभवतः इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के सुरक्षित होने के चलते इस दुर्ग का निर्माण कराया गया होगा। किले में कई खंड हैं, जिन्हें किलेदार महल, राजभवन या महल सराय, हथिया पोल, बरादरी, रोशन सिद्दीकी चौक, राजा का महल तथा तख्ता बादशाही फुलवारी तथा जनाना महल, शीश या आईना महल, स्नान घर, रसोई, कपड़े धोने या अन्य सेवा संबंधी आवास, नाच घर या दीवाने आम एवं फूल महल के नाम से जाना जाता है। रोहतास पहाड़ी स्वयं एक प्राचीर का कार्य करती है, फिर भी
सुरक्षा के लिए घाटों के ऊपर

0: और दरवाजे बनाकर मजबूत किलेबंदी की गई है। जगह जगह बुर्जियां तथा दरवाजे भी बनाए गए हैं जहां सुरक्षा प्रहरी रहा करते थे। सासाराम से दक्षिण पश्चिम में सिंधवार में एक प्राचीन सभ्यता का खोज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीपी सिंह द्वारा किया गया है। डॉक्टर बीपी सिंह के अनुसार यह सभ्यता सिंधु घाटी से भी प्राचीन सभ्यता है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो अति प्राचीन काल की हैं। यह भी पर्यटन स्थल के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। रोहतास की पहाड़ियों में बहुत सारे शैलाश्रय हैं जहाँ पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान था। उस समय के शैल चित्र आज भी विद्यमान हैं जिन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। इस तरह के शैलाश्रयों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ अन्य आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। इससे वनों में रहने वाली जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इस तरह के शैलाश्रयों को विकसित कर अन्य राज्य सरकारें अपने राज्य का विकास कर रही हैं। यह क्षेत्र जो प्राचीन काल में करुष प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यहाँ भगवान बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ जाते समय बंकहार प्रदेश होकर गए थे जो सोन नदी के तट पर बांक के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद भगवान बुद्ध को बोधगया लौटते समय मार्ग में कपाशियावन मिला था जो आज का कपाशिया ग्राम है। इन स्थानों को विकसित कर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित किया जा सकता है। चंदन पहाड़ी पर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया लघु शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। रोहतास का सौर्य के साथ अध्यात्म में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ प्राचीन काल से विष्णु, अगस्त्य, विश्वामित्र, परशुराम के पिता जगदम्बा आदि मनुष्यों का तपोस्थान रहा है। वहीं चंदन सहित पीर हजरत मखदूम बिजली सहित जैसे सूफी संतों ने यहाँ प्रेम और मानवता का संदेश दिया। सिखों के 10वें गुरु के पिता गुरु तेग बहादुर एवं माता गुजरी देवी सासाराम में उस समय पधारे जब गुरु गोविंद सिंह अपनी माता के गर्भ में थे। इस क्षेत्र के महान सपूत निशान सिंह अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। वहीं भवानी दयाल सन्यासी ने भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। हसन खासूर का मकबरा जो सासाराम के शहर के बीच में है, वहीं शेर शाह का मकबरा जो अपनी विशालता के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसकी तुलना ताजमहल से की जाती है। सलीम शाह का मकबरा, अलावल खां का मकबरा आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शेरगढ़ किला जो सासाराम से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है, इसके दक्षिण और पश्चिम में आलिंगन करती दुर्गावती नदी बहती है। विशाल प्राचीर के ऊपर बनी रक्षकों के बुर्जियों से दुश्मनों को देखा जा सकता है। ऊपर से देखने पर किले का पता नहीं चलता, लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाने पर किले की भव्यता का पता चलता है। जलप्रपात में माझर कुंड और धुआं कुंड सासाराम से 5 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। यह पानी 1000 फुट की ऊंचाई से गिरकर वाष्प का रूप धारण कर धुआं जैसा फैल जाता है जिससे यहां का दृश्य काफ़ी मनोरम हो जाता है। यह स्थान पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं जिनकी संख्या सुविधा देकर बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सोन इंद्रपुरी बराज जहाँ से पूरे शाहबाद एवं पटना तक की सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, इसके पहले अंग्रेजों द्वारा एनीकट सोन से बांध कर नहरों को पानी दिया जाता था। उसी प्रकार दुर्गावती जलाशय परियोजना है जहाँ से सिंचाई हेतु नहरें बनाने का कार्य चल रहा है। ये स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार रोहतास क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं जिनको सजीव रूप देने की आवश्यकता है जो बिना सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के संभव नहीं हो सकता।
1: देखें कितना नीमन नीमन जानकारी यहाँ के देने विजय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। रोहतास जिला में पर्यटन के संभावना बा, सही में बा, सरकार के थोड़ा सा एक पर ध्यान देवे के चाहिए। आ सही बात बा, आई यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दिल जाओ। आई अब हमने के जानकारी के तहत तो जानल जाओ हर घर तिरंगा अभियान। देखिए श्रोता सब, हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू कैल एगो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बा। ए साल ई अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त

तक आयोजित कैल जा रहा बा। एकर मुख्य उद्देश्य नागरिक के मन में देशभक्ति के भावना के जगावल और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव के बढ़ावा दिहल बा। मुख्य बात बाकी पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आवेला। एह साल अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वां बरस पूरा होखला के जश्न से जुड़ दिया गया बा। एकरा तहत तिरंगा यात्रा, रैली, वंदे मातरम के सामूहिक गायन कैल जा रहा बा। एकरा साथ साथ नागरिक लोगन से अपील कैल जा रहा बा कि उ भी अपन अपन घर पर तिरंगा फहराई और आधिकारिक हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपन सेल्फी अपलोड करी। देखिए कितना बढ़िया ये अभियान चल रहा बा। ये अभियान से हमनी के लाभ लिहल जाओ। आई अब हमनी के दूसरा जानकारी बा डॉक्टर विक्रम साराभाई के जयंती। ई 12 अगस्त के मनावल जा रहा बा। ई उनकर जन्म 12 अगस्त 1919 के अहमदाबाद गुजरात में भइल रहे। उनका के भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक मानल जाला। उ इसरो के संस्थापक में अहम भूमिका निभावले रही। जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 के भइल रहे। यहाँ के निधन 23 दिसंबर 1971 के तिरुवनंतपुरम केरल में भइल रहे। एक यहाँ के पहचान बा हमनी के कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के अग्रदूत और उनका अनुसार देश के महान वैज्ञानिक रही। यहाँ के 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नींव रखले रही जो बाद में इसरो बनावल गई। इनकर प्रमुख संस्थान बटे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम। तो एक तरह से विक्रम साराभाई के जयंती हमनी के 12 अगस्त के मनावल जा रहा बा। यहाँ के हमनी के भारत के ही नहीं पूरे देश दुनिया के कहीं कि वैज्ञानिक में एक रही जन अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम से हमनी के जानत रही जा। अब आई आज के हमनी के आ कल के मौसम के पूर्वानुमान जानल जा। श्रोता सभे हमनी के जिला के एक दो स्थान पर मेघ गर्जन, वज्रपात आ तेज सतही हवा तथा झोंकेदार हवा चले के संभावना बा। आंधी, बिजली और तेज हवा से फसल के नुकसान, फूल फल झड़ल, कीट रोग प्रकोप तथा सब्जी और बागवानी फसल के क्षति पहुंचा सकता और पशुओं पर भी तनाव बढ़ा सकत बा। हमनी के समान सलाह बा कि कमजोर मानसून के में वैकल्पिक फसल अपनाई। मक्का DKC 90-81, DHM 117 और रागी BLM 379, RU 8 बांकुला के बुआई हमनी के कर सकत बनिया। श्रोता सभे धान के सुगंधित किस्म के रोपाई ए महीना में जरूर पूरा कर ली। धान रोपित खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अलगी कल्चर के भी प्रयोग करी। खेत में जल जमाव बनौले रखी। जुलाई माह में रोपल गई धान में नेत्रजन के ऊपरी निवेश करी। धान के रोपाई के 45 से 50 दिन पर यूरिया के दूसरा ऊपरी निवेश जरूर करी। देखी कल जौन बा हमनी के 13 अगस्त बा, कल जौन बा वर्षा 6.0 mm होके के संभावना बा। अधिकतम तापमान काल के 34 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के उम्मीद बा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 45% रहे के उम्मीद बा। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। यही के साथ साथ देखिए समय तो एकदम उड़ा गई। चलत चलत के बेरा में सभी श्रोता भाई बहन लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए, सुनिए।

भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और मोहन राठौर रेखा राव की आवाज़ में, राजेश मिश्रा के बोल हैं और नगेंद्र संतोष का संगीत है। फिल्म का नाम है का उखाड़ ले बा।

0: बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।

सुजीत चौबे की आवाज़ में अभी आपने बेनाम बादशाह फिल्म का ये गीत सुना, और अब लीजिए सुनिए पलक मुच्छल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है भाई बनल पटदार। गीतकार संजीत निर्मल और संगीतकार अमन अश्लोक का।

0: पलक मुछल के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: पैरामेडिकल है पारस इसके एक और एपिसोड के साथ राजेश आप सबों के घर आंगन में आ गया बातें करने, युवा साथियों से, उनके माता पिता से, छोटे छोटे भाई बहनों से जिन्हें कल इंटरमीडिएट पास करना है, फिर अपने करियर के बारे में सोचना है। जी हाँ, हम बातें करते हैं इस कार्यक्रम में कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ सेक्टर में आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं,

0: निजी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी प्रचुरता ही प्रचुरता है, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे से, जी हाँ, लगन से आपने पढ़ाई की होगी और सब्जेक्ट्स को समझते होंगे। क्योंकि आम तौर पर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जितनी वैकेंसीज आती हैं, एप्लीकेंट जो है ना, उम्मीदवार, उससे करीब करीब थोड़ा कम ही रहते हैं। वैसी स्थिति में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो नौकरी मिलना अच्छा हो सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, और जो पढ़ेगा वो तो जीतेगा ही, ये शर्तिया है। और जो अपने मन के अनुसार पढ़ेगा, टेक्निकल पढ़ाई करेगा, विशेषज्ञता हासिल करेगा, वो तो निश्चित ही जीतेगा करियर में और रोजगार भी मिलेगा। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के बस स्टैंड रोड, अब पुराना बस स्टैंड हो गया है, लेकिन चक्कनपुर पुलिस स्टेशन यही है, उसके ठीक सामने ये संस्थान है। श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, इसी ग्रुप का ये संस्थान है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपके पास करियर से रिलेटेड कोई सवाल है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हाँ, तो आप इस पर जानकारियां ले सकते हैं। नंबर मैं बता रहा हूं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, हाँ, डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत होगी और उनसे आप सारे समाधान ले सकते हैं। नंबर नोट करें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं, अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं। डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी लेना आपका, हाँ, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आप एक सफल इंसान होने चाहिए। और अगर जो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर ली, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग, या इसी तरीके से और भी कोई कोर्स कर लिया आपने, फिजियोथेरेपी में मसलन कर लिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपने मसलन कर लिया, तो आपको सेवा का मौका भी मिलेगा, साथ में नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलेगा। नंबर एक बार फिर, जो बहुत कॉमन है, आपको बता दें, 9155558888, 9155558888। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी को हम बुलाएं, उससे पहले एक दो बातें और कर लेना चाहते हैं। वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और सफल भी हुए, हाँ, नीट में उनका रोल नंबर भी आया, लेकिन किसी कारण से सरकारी कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं जा सकते, अर्थाभाव के कारण राजेश भी नहीं जा सकता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उनसे कहते हैं कि रास्ते बंद नहीं हो जाते, रास्ते खुल जाते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में ही जाना चाहते थे ना, आप हेल्थ सेक्टर में ही जाइए, और इसी नंबर पर 9155558888 या 9162413233 इस नंबर पर बात कर लीजिए। जहां तक पैसे की समस्या है, तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिस पर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलते हैं, 4 लाख रुपए तक आप वो लोन लेकर, और बहुत ही कम ब्याज पर चुकाना पड़ता है, वो भी शायद, हाँ, हमें जहाँ तक पता है, नौकरी मिलने के बाद, तो उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए आज कुछ जानकारियां लेते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से, और आपके रास्ते, आपके सोचने के रास्ते को और आसान करते हैं, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, किस मुद्दे पर बात करनी है?
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
0: हाँ,
1: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
0: है, जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी,
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं, ये बहुत ही उपयोगी कोर्स।

0: से, और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
2: कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपके लिए लगातार इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए जो किए हैं खास करके, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप बात कर सकते हैं, नंबर है 9155558888 और 9162413233। जी हाँ, इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से।
1: एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही है कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक कि और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह

0: की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहाँ से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह। कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हमेशा इम्फेसिस

0: तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये जानकारियां हमने सिर्फ दिलवाई कि आपको चुनने में, करियर चुनने में, कोर्सेज चुनने में आपको मदद की जा सके। आप फिजियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी, आप फिजियोथेरेपी, हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बीएससी नर्सिंग या पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करके अपने लिए एक मुकम्मल जहान प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे में हमारी ये बातें आपके लिए शायद मददगार होंगी। आते आते वर्षों गुजर गए, 10 साल से ज़्यादा हो गया इस प्रोग्राम को सुनकर बहुतों ने ये कोर्स ऑप्ट किया और आज अपने करियर में ऊंचाइयों पर हैं। हम बार बार कहते हैं जो पढ़ेगा, खास करके टेक्निकल पढ़ाई करेगा, वो जीतेगा ही, जीतना निश्चित है, ऐसा हम समझते हैं। आगे उसकी पढ़ाई और वो जाने। बहरहाल अधिक जानकारियां चाहिए तो 9162413233 ये नंबर है, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से। थैंक यू कहते हैं श्रीराज ग्रुप को, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस लेकर आने का मौका दिया। अगर कुछ छूट गया होगा तो एक कार्यक्रम रोजगार भी है, आप सुन सकते हैं रविवार के दिन। फिलहाल राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम।

गुड इवनिंग रोहतास, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिले के सभी सब्जी उत्पादकों और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से वेजफेड की योजनाओं, सेवाओं अथवा कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायत और सुझाव दर्ज कराने के लिए tarkarai.in पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। किसान घर बैठे अपनी शिकायत या सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिले में सब्जी उत्पादन से जुड़े किसानों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत रोहतास डाक प्रमंडल की ओर से अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी ने डीएम दीपक कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार को राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर अभियान का शुभारंभ किया। डाक अधीक्षक ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत रोहतास डाक प्रमंडल के अधीन आने वाले सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया गया है।

जिले के प्रमुख स्टेट हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों की डिजिटल गिनती शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने यातायात सर्वेक्षण के लिए हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे सड़क से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इस सर्वे का उद्देश्य स्टेट हाईवे पर प्रतिदिन होने वाले यातायात का वैज्ञानिक आकलन करना है।

सुरक्षित मातृत्व अभियान से जटिल प्रसव वाली महिलाओं की पहचान समय से हो जाती है। यह मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रत्येक माह 3 बार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्वास्थ्य संस्थानों पर आने वाली गर्भवती माताओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करवानी सुनिश्चित की जाती है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान जटिल प्रसव वाली महिलाओं की ट्रैकिंग किया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सके। कैंप के दौरान जटिल प्रसव वाली महिलाओं की पहचान कर इसकी सूची पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। इसके ठीक बाद जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
4: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया। योजना के लिए कैबिनेट ने 950 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी शुरू। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ पूरा प्रदेश। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि इस फैसले से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत होगा।

0: अब तक 4,15,000 बच्चों को उज्जवल क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। बहुत लोग बच्चे पढ़े हैं। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस योजना को, उज्जवल क्रेडिट कार्ड की योजना को अगले 5 साल 2026 से 2031 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है, जिससे बच्चे मेधावी बात पढ़ सकेंगे। और इसके लिए इस वर्ष 26-27 में 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
1: सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित कर दिया है।
0: 7 निश्चय 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026 से 27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है। और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8,33,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो गाँव गाँव में स्किल डेवलपमेंट का काम युवाओं के लिए किया जाता है, इसके 5 साल के एक्सटेंशन से युवाओं को स्किल मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सकेगा।
1: एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में 221 पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने कयाची, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। विपक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था। इससे पहले गृह मंत्री ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे इस मामले पर विपक्ष के सवालों का कल जवाब देंगे।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए मूल्य वर्ग के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्लास्टिक नोटों को पूरी तरह लागू करने की निश्चित समय सीमा और इस पर होने वाले खर्च का आकलन संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक नोट कागज के नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इस वर्ष 30 जून तक 3,718 अवैध मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। इनमें फर्जी लोन ऐप सहित गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले ऐप शामिल हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से 25,698 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन को असफल किया गया। श्री कुमार ने बताया कि 32,10,000 से अधिक म्यूल खातों की जानकारी संबंधित संस्थाओं के साथ साझा की गई। जदयू सांसदों ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। इधर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वारिसलीगंज में प्रस्तावित चीनी मिल को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू होगी। इसके जरिए विद्यार्थी स्कूल के बाद रात्रि 11 बजे तक विशेषज्ञ शिक्षकों से पढ़ाई कर सकेंगे। श्री चौधरी आज पटना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
3: इसी 15 अगस्त से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि रात के 11 बजे भी यदि स्कूल के बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रात के 11 बजे भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए ये मैं जरूर सोचता हूँ।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मी, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक समेत आम लोग शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: सूरज की धवल किरणों के बीच जब तिरंगे की तीनों रंगों की आभा बिखरी तो लगा जैसे पूरा बिहार देशभक्ति के रंग में रंग गया। कहीं बच्चों के कदमों की रफ्तार थी तो कहीं युवाओं का जोश, और हर ओर गूंज रहे थे राष्ट्रभक्ति के नारे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्राओं ने माहौल को देशभक्ति में सराबोर कर दिया। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल तिरंगा लहराना नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को जन जन तक पहुँचाना भी रहा। तिरंगे के साथ बढ़ते कदम मानो यही संदेश दे रहे थे कि आज़ादी केवल इतिहास का गौरव बल्कि उसे संजोने और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 15 अगस्त से एक महीने के अंदर 30,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को बासकीट पर्चा देकर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री जायसवाल पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
3: राजस्व विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता में सर्वे का काम पूरा करने का फैसला लिया है और हम 15 अगस्त को कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिला को सर्वे पूरा करने का हम घोषणा कर सकें।
0: सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद सकरी और रैयाम चीनी मिलें जल्द चालू होंगी। श्री यादव आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे।
4: हाल में हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है, निर्णय लिया है, हमारी कैबिनेट की सहमति के साथ हम दो चीनी मिलों को प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। एक सकरी में, दूसरा दरभंगा में रैयाम, और सकरी में चीनी मधुबनी में। और मैं समझता हूं कि वहां पर दो चीनी मिलों से एक नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा उस राज्य के किसानों में आई है। किसानों में एक नई संचार, नई ऊर्जा, नई उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है।
0: संवाददाता सम्मेलन में विभागीय सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के रबी मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जाएगी।
5: राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दी है और ये योजना आगामी जो रबी का मौसम है उससे लागू होगी। ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा पहल है सरकार के तरफ से। किसानों के जो फसल की जो क्षति होती है उसका बीमा होगा, किसान को फसल क्षति के समतुल्य क्लेम का भुगतान होगा।
0: बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय और द गोट ट्रस्ट के बीच बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर विभागीय मंत्री नंद किशोर राम उपस्थित रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि परीक्षा के लिए 14 अगस्त तक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार ने बीपीएससी से शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 जल्द आयोजित कराने का आग्रह किया है। श्री तिवारी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में अभ्यर्थी

0: छात्रों से किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की।
1: छात्रों की सब बात मानी गई है तो क्यों सड़क पर उतरेंगे? कुछ नेता हैं जिनकी नेतागिरी खतरे में है, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं। अभ्यर्थी उनके झांसे में न जाए, सरकार उनकी है और उनके हर बात को सरकार संज्ञान ले रही है।
0: राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया है। श्री हसनैन पटना में पुस्तकालय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
2: मैंने आश्वासन दिया है आज कि बिहार की यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जितने लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, जो खाली पड़े हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे, और लाइब्रेरीज जो जहां पर लाइब्रेरीज जिनके अंदर ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है उनके अंदर थोड़ा और काम करने की कोशिश।
0: प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है, वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस अवधि में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। 36वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल टैली में पटना की टीम पहले स्थान पर रही, वहीं बेगूसराय की टीम दूसरे और नवादा की टीम तीसरे स्थान पर रही। रोहतास के जोगिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या के बाद जारी तनाव के बीच पुलिस ने दोनों आरोपितों को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से 600 भ्रामक पोस्ट हटाए गए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मधुबनी जिले से सटे नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक सीमा पार आने जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जाएगी। आकांक्षी जिला के प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार कांगे ने आज औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया। योजना के लिए कैबिनेट ने 950 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी शुरू। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ पूरा प्रदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: अरवल जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में सामूहिक वंदे मातरम गायन, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, सेल्फी प्वाइंट, साइकिल रैली और तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा वितरण भी किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी अमृता बैंस के निर्देशन में विभिन्न विभागों द्वारा अभियान को उत्साह पूर्वक चलाया जा रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी आकांक्षा के नेतृत्व में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सावन माह की पहली और दूसरी सोमवारी के अवसर पर जिले के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रसिद्ध मधु शर्मा शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। धान की रोपनी पूरी होने के बावजूद बारिश की कमी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसल प्रभावित हो रही है। सोन नहर में भी पानी नहीं होने के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। करपी, कुर्था और बंसी प्रखंडों में भू जल स्तर नीचे चले जाने से पंप सेट से भी अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं निकल रहा है। किसानों ने उर्वरक निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर मिलने की शिकायत की है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। जिले में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अब तक 6000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का लाभ उठाएं। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अरवल जिले के 81,013 लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से 9,13,37,500 रुपए की राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समाहरणालय के सभा कक्ष के साथ प्रखंड, पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिखाया गया, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर आलम खान के निर्देश पर करपी प्रखंड संसाधन केंद्र में दिव्यांग बच्चों के बीच सहायता उपकरण वितरित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त विकसित भारत थीम पर जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को नशा से दूर रहने की शपथ भी दिलाई जा रही है। साइबर थाना अरवल की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय अरवल में प्रचार सुमंत कुमार के उपस्थिति में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बचाव के लिए छात्रों और शिक्षकों को जागरूक किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिले में 1 से 7 अगस्त तक अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत NH 139 पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं अभया ब्रिगेड के टीम ने मध्य विद्यालय मखमिलपुर बंसी में छात्राओं को दहेज प्रथा, बाल विवाह, छेड़खानी, साइबर अपराध और पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। +2 उच्च विद्यालय कुर्था में बीते दिनों निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों और शिक्षकों को मतदान के महत्व, अधिकार और कर्तव्य की जानकारी दी गई। इधर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त के लिए जिले में 92,000 से अधिक लाभार्थियों को जीविका के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है।
0: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से।

0: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है आपके फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद।
2: नमस्कार बंधु।
1: हाँ नमस्कार।
2: आपका शुभ चिंतक।
1: तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
2: संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ बंधु।
1: जी जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, बोलिए क्या हाल चाल है आपके जगह का और आपका भी।
2: अरे मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ। और 15 अगस्त के आपको पुरकुलुस मुबारकबाद।
1: चलिए आपको भी मुबारकबाद।
2: पहले तो मैं अपने भारत वर्ष को स्वतंत्र करने में जिन सेनानी ने अपने सर्वस्व का त्याग कर अपने प्राणों की आहुति दी, उनको मैं नमन करता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, और उन्हीं की शहादत है कि आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारा देश आज़ाद है। और बाहुबली जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी, विषय को और संदर्भ को देखते हुए
1: जी,
2: जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, फिल्म पृथ्वीराज चौहान, और इस गीत को गाया है मन्ना डे जी ने।
1: तो चलिए बाहुबली जी, हम आपको सुना रहे हैं यही गीत।
3: माँ।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। स्वागत करते हैं आप सभी का इस फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद में। श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, बारिश की फुहार का भी आनंद आप सब ले रहे होंगे। और श्रोताओं, इसी हफ्ते यानी शनिवार को हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। आप चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हेलो मनपसंद। हाँ, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: अंसारी बोल रहा हूँ। आप लाल बहादुर सर बोल रहे हैं?
0: जी, हाँ, लाल बहादुर सिंह ही बोल रहे हैं। आप दिलनवाज?
1: चल रहे आपकी?
0: हाँ, हाल चाल ठीक है, अपना सुनाइए।
1: ठीक है,
0: और
1: रेडियो परिवार ठीक है साहब?
0: हाँ, सब बहुत बढ़िया। और
1: हेलो फरमाइश में कोई हेलो मनपसंद में कोई फरमाइश बढ़िया सुना दीजिएगा।
0: आपने फोन किया है अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए ही ना? हाँ, तो कौन सा गाना सुनवा दिया जाए?
1: बॉर्डर फिल्म का गीत।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो दिलनवाज भाई, हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म से ये देशभक्ति गीत, सुनिए।

0: श्रोताओं, हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग हम लेकर पुनः हाजिर होंगे रात्रि 8:45 पर। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
1: अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं है। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक

के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉक्टर एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि यह कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात

कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे।

आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं।

लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मनपसंद का शेष भाग।
1: हेलो मनपसंद।
2: नमस्कार बंधु।
1: हाँ नमस्कार।
2: आपका शुभ चिंतक।
1: तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
2: संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ बंधु।
1: जी जी आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, बोलिए क्या हालचाल है आपके यह जगह का और आपका भी।
2: अरे मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ। और 15 अगस्त के आपको पुरकुलुस मुबारकबाद।
1: चलिए आपको भी मुबारकबाद।
2: पहले तो मैं अपने भारत वर्ष को स्वतंत्र करने में जिन सेनानी ने अपने सर्वस्व का त्याग कर अपने प्राणों की आहुति दी उनको मैं नमन करता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, और उन्हीं की शहादत है कि आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारा देश आज़ाद है। और बाहुबली जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी विषय को और संदर्भ को देखते हुए
1: जी
2: जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है फिल्म पृथ्वीराज चौहान और इस गीत को गाया है मन्ना डे जी ने।
1: तो चलिए बाहुबली जी हम आपको सुना रहे हैं यही गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते। हेलो मनपसंद, मैं बोल रहा हूँ विक्रमगंज जिला मोहम्मद रईस का सन।
0: हाँ स्वागत है आपका।
1: आपका भी स्वागत है सर। मेरा सबसे नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते, और क्या करते हैं?
1: हम तो घर में लेटे बैठे रहते हैं, कुछ करते तो नहीं, गाना सुनते रहते हैं। आपका रोहतास है, ये मनपसंद है। रात को फिर आपका 10:30 बजे होता है प्रोग्राम, वो भी सुनते रहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप आकाशवाणी सासाराम के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। मेरा नाम लाल बहादुर सिंह हुआ जी। हाँ नमस्ते, तो आज इस हेलो मनपसंद में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना सुनवा
1: सुनना
0: दिया जाए
1: चाहते हैं फिल्म भाभी का
0: जी? भाभी फिल्म का कौन सा गीत?
1: चल उड़ जाए पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। यही गाना फिल्म सुनना चाहते
0: चलिए
1: हैं सर।
0: बहुत बढ़िया पसंद है आपकी।
1: राना हम
0: ठीक
1: है ना। जी जी
0: है,
1: सर।
0: बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद, कौन बोल रहे हैं?
1: राजकिशोर सिंह भरत सिंह अनोखा लालगंज से। हाँ
0: हाँ राजकिशोर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सब बताइए, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बारिश आपके तरफ हो रही है क्या?
1: सासाराम में तो बढ़िया बढ़िया बारिश 7-8 हो गया, वैसा बारिश हमारे यहाँ अभी एक भी नहीं हुआ है। नहर
0: चलिए, इधर के बाद उधर होगा ही।
1: के पानी से सब खेती हो रहा है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी सब संपन्न हो गया, धान की रोपनी हो गई। कौन सा गीत सुनवा दिया जाए?
1: फिल्म आनंद का मन्ना डे की आवाज में है, जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी
0: चलिए
1: तो हंसाए कभी तो रुलाए। हमारे
0: जी,
1: ये गीत
0: और
1: भरवत गढ़नौखा के मोतीमाला जी को भी पसंद है
0: जी,
1: और लाल बिहारी जी को भी। हाँ
0: वाकई बहुत ही खूबसूरत है और जिंदगी की सच्चाई बताता है। तो चलिए, आप और अपने दोस्तों के साथ सुनिए यही गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: हेलो मनपसंद।
2: हेलो मनपसंद।
1: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ जी
1: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम अजय है, मैं सासाराम प्रखंड के नौना गांव से बोल रहा हूँ।
1: जी अजय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: जी
1: क्या हालचाल है?
2: जी ठीक है सर, आप अपना बताएं।
1: हम यहाँ बहुत बढ़िया हैं, हमारा रेडियो परिवार भी बहुत बढ़िया है।
2: जी
1: और आप तो रेडियो के नियमित श्रोता हैं
2: जी जी
1: और पारखी भी हैं। और अजय जी, क्या हो रहा है आजकल?
2: आजकल सर अभी मतलब गांव पर ही है
1: जी
2: जहाँ खेती हो रही थी।
1: जी खेती बाड़ी तो अब खत्म हो गई होगी, धान की रोपनी
2: जी
1: संपन्न हो गई होगी।
2: सोहनी होना है।
1: अच्छा, सोहनी हो रही है जी। फसल में कोई रोग वोग तो नहीं ना अभी लग?
2: नहीं सर रोग तो नहीं है, नहर का पानी चल रहा है।
1: जी चलिए, अच्छी बात है। अजय जी, क्या सुनवा दिया जाए, कौन सा गाना?
2: चांदनी जो श्रीदेवी है उनका जन्मदिन है।
1: अच्छा,
2: तो चांदनी पिक्चर का पर्वत से काली घटा।
1: हालांकि गीत बहुत बढ़िया है ये, आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार सर जी।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सासाराम से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। जी
0: हाँ तुकाराम जी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ
1: जी शुक्रिया
0: क्या करते हैं तुकाराम जी?
1: सर जी। मेरा वर्क वेल्डिंग काम करते हैं, घर के दरवाजे ग्रिल जो है चिड़िया बनाते हैं,
0: अच्छा, ये
1: पुराना रिपेयरिंग करते हैं नया बनाते हैं।
0: अच्छी बात है। और महाराष्ट्र में इस समय मौसम का क्या हाल चाल है?
1: मौसम क्या है सर जी, कई कई जगह बारिश गिर रही है, कई जगह बारिश नहीं गिर रही है,
0: हाँ
1: मौसम ऐसा बदल भी रहा है। जी
0: इस तरह का ही हाल लगभग हर जगह से मिल रहा है। सासाराम के और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: ये फोन पर मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और पुराने गीत के कार्यक्रम आई जो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: फिल्मी गीतों का ही आप कार्यक्रम सुनते हैं, फरमाइशी कार्यक्रम। तुकाराम जी आज क्या सुनवा दिया जाए?
1: वाला है 15 अगस्त को, पंद्रह
0: जी
1: अगस्त के स्वतंत्र दिन की आपको, आपके सासाराम परिवार को, हमारी जादव परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी शुक्रिया, और आपको भी। हाँ कौन सा, जाहिर है कि आप देशभक्ति गीत सुनना चाह रहे होंगे, मेरे देश की धरती।
1: सही
0: ये
1: है।
0: बहुत ही बढ़िया गाना है, महेंद्र कपूर साहब ने गाया है।
1: मिश्रा के नाम डेडिकेट करना
0: हाँ
1: चाहता
0: शौक से लीजिए
1: हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी।
1: हमारे मित्र आर्यन पाटिल जी, पीएसआई राजशेखर जी, विठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़गे जी, श्रीकांत मंडारे जी, विजय पाटिल दारुकर जी, धनंजय टेलर जी, रमेश जाधव जी, और उदय काळे जी, रामचंद्र कोरडे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: हाँ तो चलिए तुकाराम जी अपने दोस्तों के साथ सुनिए ये गीत।

आप सुनेंगे शनिवार संध्या 7:50 पर श्रोताओ कार्यक्रम हेलो मनपसंद के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए आप हमें हमारे इस फ़ोन नंबर पर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0618422110। श्रोताओं से एक आग्रह कि जिन श्रोताओं का कॉल आज शामिल हुआ है वे कृपया अगली बार कॉल ना करें ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके। अब दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन पसंद। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: वक्त रात्रि के 8:44 और पूरे 53 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण

0: निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
5: भारत में उभरती हुई

0: ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज

0: हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2 मिनट और 18 सेकंड तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांति मोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ।

इसी के साथ ही शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

राजेंद्र कृष्ण की कल लिखा यह नगमा था, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई।

अमृता भारती और अरुण कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना ऐ दिल एल्बम का ये गीत। अरुण कुमार के बोल थे और गौरव कुमार का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए आयुष्मान चौधरी और राजमणि की आवाज़ों में, नरेंद्र कुमार त्यागी के बोल हैं और एल्बम का नाम है बदनाम हुए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नेहा कक्कर और गुरु रंधवा की आवाज़ों में अभी आपने सुना और प्यार करना है एल्बम का ये गीत सईद कादरी के बोल थे और सचेत परंपरा का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोना वर्मा और जयवर्धन वर्मा की आवाज़ों में, एल्बम का नाम है पिता का साया, संजीव पांडे के बोल हैं और शशिकांत शर्मा का संगीत है।

मेनका मिश्रा के गाए इसी गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ से। शैलेंद्र के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत है। फिल्म परख।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने चुपके चुपके फिल्म का ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और एसडी बर्मन का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए प्यासा सावन फिल्म का ये गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संतोष आनंद के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने प्यासा सावन फिल्म का ये गीत सुना। संतोष आनंद के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। वर्मा मल्लिक के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत सुना। वर्मा मलिक के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए अजनबी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर।

प्रस्तुत है कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार, चिंतन, श्री रामचरित मानस, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र प्रातः 8 बजे और 8:15 पर वापस आएंगे स्टूडियो और सुनेंगे देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम। प्रातः 8:20 पर आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

पूर्वाह्न 10 बजे आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पुनर्नवा और 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम रसधार और पूर्वाह्न 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।

शाम की सभा की शुरुआत होगी भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन से और 5:30 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन और 5:35 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। सात बजकर 25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। और 8 रात्रि आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। आठ बजकर 15 पर आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद, माफ़ कीजिएगा ई मनपसंद। और 8:30 पर आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के प्रसारण। और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग। 10:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट तराने। और 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित कल होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के।
1: संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए। और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को